0: വൈവിധ്യമാർന്ന ശ്രവണാനുഭൂതി പകരാൻ റേഡിയോ മലബാർ 89.6 FM.
1: वो सपना से बहुत प्यार करता है ना, इसलिए तुझे हर किसी की आवाज सपना की ही आवाज लगती है.
2: सपना? सपना कौन थी?
3: मेरी अपनी, मेरी.
4: अरे हमें तो अपनों ने लूटा, पैरों में कहां दम था. मेरी किश्ती थी डूबी वहां जहां पानी कम था.